जे पत्थर उत्ते आराम लिख के पानी विच रख दियो ते पत्थर तर सकदा है। देवा एक पंडित सी, देवा पंडित ने अपराध किया पर पत्थर ने उन्हें उतार दिता। भाई जे एक पत्थर इंसान नूं उतार सकदा है सच्ची भावना दे नाल, ते जिहड़ा इंसान मन करके राम कवि वह क्यों नहीं तरदा, जरूर तरदा है। देवा पंडित एक राजे दे राज विच मंदिर दा पुजारी सी। एदा काम सवेरे उठना, मंदिर नूं धोना, समग्री तैयार करनी, फुल्लां दा हार बना के पत्थर दीयां मूर्तियां दे गल विच पा देना। राजे ने आना, पूजा करनी, पूजा करके जदों राजे ने जान लगना मूर्तियां दे गलों ओ हार ला के राजे दे गल विच पा देना। बस इन्ना काम इस देवा पंडित दा सी जिदा जिक्र भगत नामदेव ने अपनी बाणी विच कीता है। बहुत समा बीत गया। एक दिन

देवा पंडित बड़ा बेफिक्र है कि कल दी गल आई गई हो गई। पर राजा पूछदा है

ने केड़ा उठ के आ जाने। पर राजा कहन लगा, चंगा पंडित जी, मैं फिर कल सवेरे 4 बजे दर्शना वास्ते आवांगा। इन्नी गल कह के राजा ता

पंडित जिहड़ा है उदास हो गया कि हुण की होवेगा। फिर सोचिया कि इक्को ही रस्ता रह गया है कि हुण मैं अरदास करां। ओ परमेश्वर अरदास ते उठ के हो सकदा है मेरा गुना माफ कर देवे। देवा पंडित हाथ जोड़ के भगवान दे सामने बैठ गया। कहन लगा है भगवान सारी उम्र मैं तेरी सेवा की थी, कदी कोई सवाल नहीं मारे।

सफेद दाड़ी विच दर्शन दे ते मेरी रखिया कर। देवा पंडित जुड़िया बैठा है, रात कदों बीत

आ पहुंचे है। देवा पंडित दी अखां बंद ने, उन्हूं कोई पता नहीं राजे ने आना है। उदा मन जुड़ चुका है। राजा आया, राजे ने मंदिर दा टुकिया होया बुआ खोलिया, ते की देखिया, पत्थर दी मूर्ति ते सफेद लम्मा दाड़ा आया होया। देवा पंडित वल देखिया, ओ हाथ जोड़ के बैठा है, अखां बंद ने। राजे ने नमस्कार की थी, देवा पंडित नु हलाया, देवा पंडित ने अखां खोलिया, सीधा ध्यान मूर्ति ते पहला कीता, पत्थर दी मूर्ति ते

देवा पंडित निहाल हो गया, ओ ता बलिहार जा रहे है, पर जेड़ा राजा सी ओदे मन विच शंका पैदा हो गया। राजा कहन लगा, अज तक सुनिया नहीं के पत्थर दी मूर्ति नू दाढ़ी आई हो, ए कदी हो ही नहीं सकता। इस पंडित ने पत्थर दी मूर्ति

पर भगवान ने अपने बिरध बाने की लाज रखी ते सफेद दाड़ी विच दर्शन दिते, पर राजे दे मन विच शंका हो सकता है पंडित ने ए नकली दाड़ी लाई होवे। राजा अगे होया

उस पत्थर दी मूर्ति ने नक चढ़ाई मानो के दुख पिया लगता है। पर राजे नू हाले भी भरोसा नहीं आया के पत्थर दी मूर्ति ने नक चढ़ाई। वो जिहड़े वाल सन राजे ने

वो आप ही खत्म हो गया। राजन आज तो बाद तेरा राज भी खत्म हो जाएगा। तो भगत नामदेव जी कह रहे ने कि देवा पंडित ने भावे अपराध कीता सी पर उन्हें मन करके अरदास कीती ते उस देवा पंडित नु भी उस

अचानक ही इस गन का दे चुबारे थले आके खलो गए। गनका ने देखिया कोई साधु ठंड दे नाल कंबदा पिया, इन्हें बुआ खोलिया क्या संत जी उत्ते आ जाओ, महापुरुष चुबारे आ गए ने, सुके कपड़े दिते गनका ने, अग बाली, महापुरुष बैठे चुबारा देखे है। कहन लगे मना तू बड़ी गलत जगह से आ गए। महापुरुष उठ पे कहन लगे मैं वेसवा दे घर आ गया। महापुरुष उठ के तुर पे, गनका जिहड़ी सी हाथ जोड़ के महापुरुषां दे चरणां ते डिग पई। कहन लगी संत जी मैं सारी उम्र पाप कीते ने, पर हुण पापां तों डर लगन लग पे, मैनू कृपा करो, मैनू नाम दान बख्शो तां कि मैं इन्हां पापां तों बाहर निकल सकां। उहदी बेनती सुन के महापुरुष उहदे ते दयाल हो गए। कहन लगे बेटा साडे कोल ए तोता है, ए असी तेनू दे चलने आ, ते तेरा काम रोज सवेरे उठ के इस तोते नू जदू उठाना है ता ए कहना है गंगा राम कहो राम राम, जे ता इनू राम राम जपावे ता तेरा उधार हो सकता है। गणका कहन लगी महाराज जिस तरह कहोगे मैं उसी तरह करांगी। महापुरुष अपना तोता इस गणका पापण नू दे गए ने, भाई गुरदास जी बयान करते हैं।

कहना गंगा राम को राम राम। रोजाना ही हुण पाप छड़ दिते ते तोते नू राम राम जपान लग पई ते एदी लिव तोते नू जपांदिया जपांदिया अपनी भी लग जांदी।

दुरमत कहंदे ने माड़ी मत, माड़ी मत भी दूर हो जांदी है। कलेवर कहंदे ने शरीर नू, शरीर दे कीते पाप सारे खत्म हो जांदे ने, जिड़ा मन करके राम राम करदा है।

जानते हो मुकुट पे बदक एक शिकारी सी चरण कृष्ण भगवान दे एक रात कृष्ण भगवान जंगल विच लेटे हुए सन। अपने एक लत ते दूसरी लत रख के कृष्ण भगवान दे पैर विच पदम सी जिड़ा के बड़ा चमक रहा सी। रात दा वेला सी, ए बदक शिकारी शिकार खेडन वास्ते आया। कृष्ण भगवान दे पैर विच जिड़ा पदम चमक रहा सी, इन्हे समझिया कि शायद कोई हिरण बैठा है। किसे हिरण दी अख पई चमकदी, उस बदक शिकारी ने निशाना लगा के तीर छड़िया। ओ जड़ा तीर सी कृष्ण भगवान दे चरणा विच आके लगा। बदक शिकारी आया, हिरण दी जगह कृष्ण भगवान दे चरण जख्मी होए देखे, ता ए भगवान दे चरणा ते डेग के रोन लग पया। ते कृष्ण भगवान ने कहा, भाई तू रो ना।

क्योंकि साड़ा आखरी समा आ गया। असी हुण यह दुनिया छड़ के उस परमेश्वर दे कोल जाना है। भगत नामदेव जी कह रहे ने कि उस बद्धक शिकारी ने भावें कृष्ण भगवान दे चरणा विच तीर मारे है, पर कृष्ण भगवान ने उन्हों फिर भी गल दे नाल लाया ते उह मुक्त पए ते उस बद्धक शिकारी नूं भगवान ने तीर खा के भी मुक्ति दे दित्ती। ते भगत जी कहिंदे ने हौ बल बल जिन राम कहे, मैं उन्हां तों बलिहार जाना जिहड़ा इंसान मन करके

दासी सुत बिदर पांडवां दा मत्रेया भरा सी, पिता ते पांडवां दा जिहड़ा पिता सी ओही बिदर दा भी पिता सी, पर बिदर दी जिहड़ी मां सी ओ गोली सी नौकराणी। के भगवान ने दासी सुत दासी दे पुत्र बिदर नू भी तारिया, सुदामे नू भी तारिया, ते उग्रसैन जिहड़ा सी उग्रसैन को राज दिए। उग्रसैन कंस दा पिता, कृष्ण भगवान दा नाना सी। कंस ने अपने पिता उग्रसैन नू कैद कीता होया सी ते आप राजगद्दी ते बैठा जुलम कर रहा सी। कृष्ण भगवान ने कंस नू मार के अपने नाने उग्रसैन नू फिर

ना पीजे बार बैठे हैं सुन, ना पीजे रूपी माली रंग, ना पीजे तीर्थ पविए नंग, ना पीजे पेड़ मरे पिड़ सूर, कोई बड़ा सुरमा होए अपने आप नू खत्म कर देवे रण विच, रब नहीं पीजदा। ना पीजे केते होवे तूड़, कोई अपने आप नू तूड़ भी बना ले, पर आखिर विच गुरु पातशाह गुरु रामदास महाराज सारंग दी वार विच कहंदे हन, लेखा लिखिए मन के पाए, जे तेरा मन ही नहीं होया, जे मन विच दुई है तो फिर की कीता। गुरु पिज जांदा है, लेखा लिखिए मन के पाए, नानक पीजे साचे नानक। इसलिए भाई अपने मन नू गुरु दे चरणा विच जदों भी लियाओ, सब कुछ बाहर छड़ के आओ, और आके की कहो मेरा मुझ में किछ नहीं। गुरु नानक दे बख्शणिया कोई टाइम नहीं जे लगना, जेड़ा आप छोड़ देन थी, जेड़ा अपना आप छड़ दवे, अपनी हंकार कमांड छड़ के आखे की आखे तुसी भी आखो किरतन दी समाप्ति है।

तब इस तुक नु गायन करो और सिंह दिस इज द शब्द ऑफ धन गुरु रामदास साहेब सोट महला चौथा सब मिलके करो कीर्तन।

0: कलयुग
1: में कीर्तन परदाना गुरमुख जपिए लाए ध्याना।
0: कलयुग में कीर्तन परदाना गुरमुख जपिए लाए ध्याना। आप तेरे सगले कुल तारे हर दर्जन।

बहुत गरीब सी, अनपढ़ भी, गावां मझां चरांदा है। भगत धरनी बारे भाई गुरदास जी ने अपनी वार विच इस तरह बयान कीता है कि जदों इंसान सच्चे मनो उस परमेश्वर की भगती करता है, उहदा नाम लैंदा है, तां उह परमेश्वर इस तरह आके मिलता है जिवें धन्ने नूं मिलिया। भाई गुरदास जी इस तरह बयान करते हैं।

कामकार ये कोई मखौल है मंदिर विच मूर्ति चुक के मैं तैनू दे दें पर जिड़ा तरना है ये दे मन विच

ए पुजारी तन्ने नू कह के कि तन्या मैं तेनु ठाकुर देना मंदिर दे पिछवाड़े चला गया। बार डिगा होया एक गोल मोल पत्थर चुकया कपड़े विच लवे

पुजारी ने अपना पिछा छड़ा लिया। होने ते फर्क है, ओ पुजारी पत्थर दियां मूर्तियां दी पूजा करदा है, पर पत्थर समझदा है। ते तरने नूं उस पुजारी ने कोई मूर्ति नहीं दिती, बाहरों एक पत्थर चुक के दिता, पर तन्ने दी भावना उस तन्ने ने उस पत्थर नूं

के दही रिड़क के लस्सी बनाई। एक थाली विच रोटी रखी, नाले लस्सी ले ठाकुर दी।

जद तक तू रोटी नहीं खाएगा मैं भी रोटी नहीं खानी पावे मेनू भुखिया मरना पवे। साध संगत जेड़े लोग ए गल कहंदे ने किथे रब किन्ने रब देखे उन्हों पुछो भाई तू इस लायक है कि तू रब नू देख सकी जे देखना है उस नू ते भगत धन्ने वर्गा अपना मन बना लो। कदी क्या किसे ने ऐ ठाकुर ऐ सतगुरु ऐ रोटी पई जद तक तू नहीं खावेगा असी नहीं खाएंगे। जद कदी क्या नहीं उन्हों मिलन दी कोशिश नहीं की थी ते सानू और रब ओ सतगुरु किस तरह मिलेगा। ऐ तन्ना बैठे कहन लगा ठाकुर फैसला कर ले है जे तू नहीं खानी ते मैं भी रोटी नहीं खानी। जद मन विच ए धार ले है ता उस परमेश्वर नू आना पिया परतक होके तन्ने दे सामने बैठ गए।

जोड़ के कहंदा नहीं ठाकुर ए रोटी तेरे वास्ते पहला तू खा अगों ठाकुर प्यार नाल मुस्कुरांदे हुए कहन लगे नहीं तनिया पहला तू खा सत्संग ए उन्हां दियां गल्लां ने जिन्हां दे मना विच प्यार है कैसियां गल्लां ने परमेश्वर दियां ते ओदे प्यारियां दियां जिदे विच कोई छल